गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आन वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू ही मौत नू दूर समझदा, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े और मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

बहु परपंच कर पर धन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेडी पापा दी खटी तू खट रहा है, जिना विच्चों तेरे अनेकां रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत न बेड़ा तेरे जी पैरी दे। एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलने। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़िया, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग ता लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे दिंदा हां, मैनू कुछ श्वास उस दे बदले।

ते जे आप बोलना चाहुंदा है तो परमेश्वर दी भगती कर, ओदा कीर्तन कर, ओदा जस कर, ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जावेगा। इस लई जब लग दुनिया रहिए नानक किस सुनिए, चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए, मिथत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत, जिन्हां नूं ए चंगे गुण प्राप्त हन भई, उन्हां दा संसार ते आउणा सफल सफल हो जावेगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह

से भंगुर प्रसाद जप आद सच गॉड सच है भी सच नानक ओसी भी सच एकोंकार सतनाम कर जपुर्ग निर्भो निर्वे अकाल मूर्त अजूनी

जब लवली भाग मिला तुझे तब लव परम पे फिर पे बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड दुखे कब हूं मिट है नीरे पछतायो सत विचार यह मथुरा जगतार्ण को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ धन गुरु नानक पातशाह धन गुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और नेड़े कोई संकट भी आएगा तो 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार नाल सारे आखो धन गुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतों के सेवादार पातशाह हुक्म करो हजूर कहने लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बना अज गुरु की संगता की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैनी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु की संगतों वास्ते आप चप्पी पी आटा तैयार किया फिर साहबान ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देव तैयार सोने थाल में पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाए माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसी सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप ही अपने सिर पे संघे पातशाह जी कड़ा प्रसाद दी दे अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर दी हुकम मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतां की सेवा करनी तुसी भी ठंडे जल की गागर पर जिथे संगत नूं भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर दे उत्ते गागर जल की रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी नाल लै लो गर्मी बनी तुरिया जाते अज पंजवां गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल फिर आखो धन गुरु रात दसो गुरु तुरिया जाता है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरदी है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता पर तक लो प्यारी सात संगत नदी रूप सिखी जे गुरु के दर्शनों में तुर पैंदी है जे कोई रुकावट पै जाती है तो गुरु आप ना उतर अद्धी रात दस गंगा जी सुना ना मेरी सिखा के प्यार वाली आवाज भावें उन्होंने प्रशादा नहीं दे ठंडा जल किसी ने नहीं पिलाया पर फिर भी गुरु की संगतों प्यार भी किस तरह अरदास कर गंगा जी सुनो साहबा ने बख्शिश की थी माता गंगा जी कन्ना में प्यार की आवाज आ रही है केड़ी सारी संगत रात का समय प्यार इजरी है ते अरदास कर रही है मेरा

फूटी किसी राह ने किया सांस निजी उठो तैयारी करो कमर कसे कर लो हूं पहुंचिए करिए गुरु दे सारी संगत तैयार हो तुर पई है गुरु दे दर्शन तुरे जाते शब्द की धारना पड़ गई क्योंकि सिख जिस वे गुरु वाल सुनता निंदिया चुगली करता नहीं शब्द की धारना शब्दार जी जो उतों ही आरती शुरू हो जाती है गुरु के दर से लगन तो संगत तुरी जाती है पढ़ती जाती

फिर पटकेरे ने तेन दुख न भुख तिन निधन नू कही। उस इंसान नू उस नर नू कोई दुख ते भुख वापर नहीं सकदा, वो निर्धन नहीं रह सकदा, वो निर्धन नहीं रह सकदा। तिनर शोक न हुए तिनर से अंत न लईए, उथे शोक नहीं हो सकदा उस दे। तिनर से अंत न लईए तिनर सेव न करे, वो किसी का गुलाम भी नहीं होगा। तिनर सह सहज समप है, वो गुलाम भी किसी का नहीं होगा, ते हर एक विच उनू वेखूगा। सहज समप है तिनर दुलीचे बह है, दुलीचे का अर्थ है दुलीचे का गलीचे, उसका स्टैंडर्ड एडा उच्चा हो जाऊगा, गलीचे विषय होंगे। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप बिथप है, उसके इनी शक्ति आ जाऊगी, वो राज खो भी सकूगा तो राज दे भी सकूगा, उखड़िया होया नू बसा भी सकूगा। तिनर दुलीचे बह है तिनर उथप बिथप है, सुख लह है तिनर संसार में, इस संसार विच ये सारे सुख उन्हों मिलन। अप है पट रिप मध ते सक्यथ तिनर जालप बने, किनू ये सुख मिलनगे, किनू ये वड्याइया मिलनगियां। गुरु अमरदास सुप्रसिन्न जे जिदे ते तीजा गुरु नानक गुरु अमरदास महाराज जी ते प्रसन्न हो जाणगे, ये सारे सुख ये सारियां

होए बिरकत बनारसी रहंदा रामा नंद गुसाई अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नावन ताई ओ स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने क्योंकि रब दे प्यारे रात सौं के नहीं बतांदे ओ ते रात जाग के बतांदे ने गुण गा के।

आनंद अपना परना मोढ़े ते मारिया गंगा घाट इशनान करन वास्ते तुर पए ने। जदू स्वामी रामानंद गंगा घाट पहुंचे

समा बीतिया। स्वामी रामानंद एक दिन इशनान करके अपने डेरे आए। ए मूर्ति पूजा नहीं सन करते, कमरे का बुआ बंद करके, अखां बंद करके, मन करके अपने ठाकुर नू इशनान कराया करते सन। और एक दिन इशनान करा रहे ने ठाकुर नू, कपड़े पवाए, सिर ते मुकट रखिया, अचानक ख्याल आया मना, सिर ते मुकट पा दिता है, हार पाण दा ते ख्याल ही नहीं रहा, हार छोटा है, मुकट तो पै नहीं सकता, मुकट लावा ता बेअदबी होंदी है। जिवें असी किसे दे गल हार पाना होवे, हार छोटा होवे, पग ला के गल विच हार नहीं पाईदा। इसे तरह स्वामी जी सोची पै गए, हार छोटा है, मुकट तो पै नहीं सकता, जे हार ना पावा पूजा पूरी नहीं होंदी। इन्ने नू कन्ना विच एक आवाज पई, स्वामी जी हार छोटा है, गंड खोल के हार दी, हार गल विच पा के फिर गंड बन दे। बिरती खुल गई, स्वामी जी बाहर आए, बुआ खोलिया, बार की देखते ने भगत कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे, ओए तू कौन है जिन्ने मेरे मन की गल जान ली? ते कबीर साहब कहंदे ने, स्वामी जी मैं आप दा सेवक कबीर हां, अमृत वेले गंगा दिया पौड़िया ते सुता सां, ता तुसी कहा सी उठ राम के राम को, ओदू दा आप दा सेवक बन गया। ते स्वामी रामानंद दियां अखां विच अथरू आ गए, मन पार आया, उन्हां कबीर नूं बाहू फड़ के अपने गल नाल लगा लिया, ते नाले कहंदे ने, ओए कबीर तू हुण सेवक किथे, तू ते मेरे तू भी अगे लंघ गए। जिन्हें मन दी गल जान ली वो सेवक किथे, और सचमुच राम कबीरे भेद ना पाई। ए अमृत वेले जागण दा फल के कबीर विच ते राम विच, उस वाहिगुरु विच

जिस तरह कोई बच्चा रिड़दा होया किसे चीज नू पकड़दा। नामदेव जी ने अग विच हथ पाया ते मां गोना बाई एक बार

उस हरी ने बाकी इंसाना नु भी पैदा किया है। तुहाडे विच भी हरी, उन्हां विच भी हरी, फिर क्यों जुलम करदे? ये उपदेश सुनिया उन आदमखोरा ने नामदेव दे

ते उस वक्त इस शब्द का उपदेश नामदेव जी ने किया। उन्हां लोगों को उपदेश जिहड़े कर्मकांड करते ने पर मन विच

अगर कोई बनारस जाके तप करे उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे अग्नि विच अपना शरीर साड़ देवे।

और सामने पहाड़ से शिवजी भगवान छोटे दे रूप में जिसनु हिंदी में सांड कहते हैं वो दे रूप में भजे आए तो वो जड़ा पहाड़ से वो दे विच समा गए ते शरीर का पिछला हिस्सा उस पहाड़ के बाहर है जिदी के लोग उत्थे जाके

लेंदे ने, कोई हाथी घोड़े दान करे, अपनी औरत भी दान कर देवे, भूम कहंदे ने धरती नूं, कोई धरती भी दान करे। और एहो जे दान

संसार दे अंदर बोलना है पर गुरु की मत द्वारा। हजूर गरीब नवाज साहब सचे पातशाह ने बड़ा सुंदर फरमा